42 र व्हाट्सएप नम्बर 97054 58 302। ग्रोथ प्रोसेस मेन पावर शाखा कार्यालय इटहरी पूर्व लाइन सुनसरी नेपाल।

0: नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन फोन नम्बर 056-421-261-596-617
1: मोबाइल 98550-6076-8 98550-6076-9 98511-62594 98510-5424

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक, इट्स 11 AM
3: अहिले बिहानको 11 बज्यो।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz
1: हर पल
0: हर
1: तपाईं सँगै
2: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक, इट्स 9 PM।
2: अहिले रातको 9 बज्यो।